ये ऑनलाइन माहौल की डिजाइनिंग इंतजाम इससे मुनाफा हासिल करने वालों की बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, प्लेटफॉर्म्स मुसलसल को रुख देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें खुद में मसरूफ रखते हैं। लामहदूद स्क्रोलिंग अल्गोरिथमिक तजवीजी निजाम और इनाम के चक्कर कस्ती तौर पर मईशत को बरकरार रखने के लिए वसा किए गए हैं। वालदेन से तो रखना कि वह खुद इन ट्रिलियन डॉलर की मशीनों का मुकाबला करें तो ना ये हकीकत पसंदाना है और ना ही मनसफाना। तहकीकात में सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में बेचैनी, डिप्रेशन, बेख्वाबी के मसाइल, तवज्जो की कमी, खुराक देने की खराबी के दरमियान गहरा ताल्लुक जाहिर हुआ है। शोशनसबोफ की सरमायादारी निगरानी के तस्वीर के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साफ तौर रवैये का जायजा लेते हैं, मुस्तकबिल के इकदाम की पेशन गोई करते हैं और हदफी इश्तहार के जरिए इससे रकूम कमाते हैं। इस निजाम बच्चे न सिर्फ कमजोर सार्फिन बल्कि डाटा के कीमती असासे भी हैं। अल्गोरिथमिक न सिर्फ ये जांच करते हैं कि बच्चे क्या पसंद करते हैं बल्कि बैक वक्त आगे जाकर किस चीज की तमन्ना करेंगे को भी सांचे में डालते हैं। लिहाजा मौजूदा स्वाबत का मकसद बच्चों से डेटा इकट्ठा करने पर पाबंदियां लगाना, हदफ इश्तहारात पर पाबंदी, तजावीज निजाम शफाफियत लाने, तामुल को ज्यादा से ज्यादा बनाने और तामीराती डिजाइन पर पाबंदी लगाना है। यानिस वारोफाकिस का टेक्नो फ्यूडलिज्म का तस्वीर ताकत की बेतनासबी की वजाहत करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जगीदारा खसूसियात से मुशाबे हैं, सार्फिन शोभ के मालिक नहीं होते लेकिन प्लेटफॉर्म के मालकान की तरफ से वजह करदा क़वायद के तहत मशरूत रसाई तक महदूद होते हैं। बच्चों के समाजी तामलात और तालीमी अमन को जमहूरी निगरानी के बजाय अल्गोरिथम के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। वालदेन मुसलसल मुदाखलत करने वाले पोशीदा और ताकतवर अल्गोरिथम का मुकाबला करने के लिए महवे जिद्दोजहद है। तो दुनिया इस सुर्ख़ियों के सामने कैसा रद्दअमल जाहिर कर रही है? ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। उम्र की तस्दीक करने में नाकाम रहने वाले प्लेटफॉर्म्स को 32 मिलियन डॉलर तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। बरतानिया में ऑफकॉम कंपनियों पर इनके आलमी कारोबार के 10% तक जुर्माना किया जा सकता है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने 16 साल उम्र की हद मुकर्रर की है। फ्रांस 15 साल से कम उम्र के लिए कम पाबंदी पर बहस कर रहा है जबकि स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वालदेन की रजामंदी दरकार है। चीन ने सख्त तरीन कंट्रोल नाफिज किया है। 14 साल से कम उम्र के लिए योमिया 40 मिनट का स्क्रीन टाइम और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डिजिटल रसाई पर पाबंदी। टिकटॉक चीन में दोइन नामी एक लैदा वर्जन के तहत काम करता है जो कि तालीम मवाद पर तवज्जो मरकूज करता है। फ्रांसी सदर मैक्रोन ने वाजह तौर पर कहा है कि चीन एक जान टिकटॉक के जरिए आलमी सतह पर तवज्जो के दौरान में कमजोरी पैदा करता है तो दूसरी जानब दोइन के जरिए अपने बच्चों को ज्यादा नज्म व ज़ब्त का हामिल तालीमी मवाद पेश करता है। ये तफरीक बाजी कदर तवज्जो तलब है। ये जाहिर करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ तजारती बल्कि सकाफती सॉफ्ट पावर टूल्स भी हैं। रियासत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फ्री मार्केट अदाकारों के तौर पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानती हैं। अगरचे बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म ने इन इकदाम को नाफज किया तो भी वो आमतौर पर इस तरह की पाबंदी की मुखालफत करती रहती है। पाबंदी के नफाज के बाद ऑस्ट्रेलियन सियासमैन टोनी अल्बनीज ने वाजिया किया 16 साल से कम उम्र के सार्फिन के 4.7 मिलियन से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को गैर फाल हदफ या महदूद कर दिया गया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, इंस्टाग्राम के एग्जीक्यूटिव एडम मोज़ी और स्नैपचैट के सीईओ इवान शपिगल के खिलाफ नौजवान सार्फिन को नुकसान पहुंचाने के दलाइल के बावजूद लग डालने वाली मसला पेश करने के जवाब में मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल अखलाकियात सिक्योरिटी के लिए रजा कराना वाबस्तगी तेज से एक ऐसी चीज से मुशाबत रखती है जिसकी अखलाकियात की धुलाई के तौर पर तशरीह मुमकिन है, यानी बुनियादी बिजनेस मॉडल को तब्दील किए बगैर जिम्मेदारी बांटना। तुर्की में डिजिटल माहौल में बच्चों की मौजूदगी के हवाले से बहस मकामी हसासियत की अक्कासी करने के साथ साथ बड़ी हद तक आलमी उमूरी निजाम के रुझान से हम आहंग है। तुर्की ग्रैंड

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइल ने गजा में अपना कसीन कैंप पर हमला करके 6 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। इसराइल के गजा पर मुस्तकिल हमले जारी हैं और फलस्तीनियों की हलाकतों में मुस्तकिल इजाफे का सबब बन रहे हैं। तिब्बी जराए के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने गजा शहर में बेघर शहरियों की पनाहगाह को निशाना बनाकर बच्चों समेत कम अज कम 6 फलस्तीनियों को कत्ल और 10 को जख्मी कर दिया है। ऐन शाहदीन के मुताबिक हमले में पनाहगाह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और आसपास के खैमों को नुकसान पहुंचा है। फलस्तीनी हुकाम ने इसराइल को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सालिसी में तय पाने और 10 अक्टूबर को नाफिजुलअमल होने वाले जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी का कसूरवार ठहराया है। हुकाम के मुताबिक 10 अक्टूबर से ताहाल इसराइल 951 फलस्तीनियों को कत्ल और तकरीबन 3,000 को जख्मी कर चुका है। जनूबी कोरिया की खबर रसाई एजेंसी योनहाप के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बाअसर बहन किम यो जोंग ने चीन के सदर शी जिनपिंग के मुतवक्का दौरा शुमाली कोरिया से मुतलिक जारी करदा बयान में कहा है कि हमारे मुल्क का जौहरी हथियारों का प्रोग्राम किसी भी सूरत में मुज़ाकरात के लिए खुला नहीं है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसां एजेंसी KCNA में इतवार के रोज छाया होने वाले बयान के मुताबिक किम यो जोंग ने कहा है कि हमारा जौहरी ताकत का दर्जा किसी भी सूरत में मुजाकराती मौजू नहीं है। उन्होंने जोर दिया है कि प्योंगयांग की क्यादत किसी किस्म की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजिंग और प्योंगयांग ने जुमा के रोज एक मुश्तरका बयान में ऐलान किया था कि चीन के सदर शी जिनपिंग 8-9 जून को शुमाली कोरिया का सरकारी दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया था कि इस दौरे के बाद शी जिनपिंग और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने के मुश्तरक हदफ की भी तौसी की है। अगरचे बीजिंग ने मुजाकरात की तफसीलात अवामी तौर पर जाहिर नहीं की, तमाम चीनी हुकूमत ने कहा है कि वो जौहरी मसले के सियासी हल के लिए अपने मखसूस तरीकों के जरिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरान की कौमी फुटबॉल टीम तुर्की से मेक्सिको रवाना हो गई है। ईरानी सरकारी नशरियाती अदारे IRIB के मुताबिक ईरान की कौमी फुटबॉल टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप से कबल अंतालिया में जारी 15 रोजा तरबियती कैंप मुकम्मल करने के बाद तुर्की से मेक्सिको रवाना हो गई है। ताहम काफले के बाज़ अफराद को दरपेश वीजा मसाइल ताहाल हल नहीं हो सके। टीम हफ्ते के दोपहर तुर्की से रवाना हुई और तवक्को है के तकरीबन 20 घंटे के सफर के बाद मेक्सिको के सरहदी शहर तिखवाना पहुंच जाएगी। IRIB के मुताबिक टीम के इंतजामी और इंतजामी अमूर से मुतल्लिका 15 अहलकार अभी तक अमरीकी वीजा हासिल नहीं कर सके। ताहम मेक्सिको का वीजा हासिल करने वाले तमाम अरकान मंसूबे के मुताबिक मेक्सिको रवाना हो गए हैं। नशरियाती अदारे ने कहा है कि बाकी अहलकारों के लिए वीजे के हसूल की कोशिशें जारी हैं और इस मामले पर ईरानी फुटबॉल फेडरेशन और फीफा दोनों नजर रखे हैं। तवक्को है कि मेक्सिको में इस हवाले से इकदाम जारी रहेंगे। तुर्की कौमी फुटबॉल टीम ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में खेले गए दोस्ताना मैच में वेनेजुएला की टीम को 2 के मुकाबले में 1 से शिकस्त दे दी है। मैच के 13वें मिनट में गुलकेर मेंडोजा के गोल के बायस तुर्की की टीम को इब्तदा में 1-0 की मगलूबियत का सामना करना पड़ा, लेकिन मैच के 44वें मिनट के पहले हाफ के अख्ताम से कुछ देर कबल बारिश आलपर जिलमास ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। मुकाबले के 54वें मिनट में विंगर खिलाड़ी यूनस आक्यून ने शानदार गोल करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया और कौमी टीम को फतेह दिलाई। नौजवान स्टार आर्दा गुलर ने दोनों को नुमाया किरदार अदा करते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से शायकीन को मुतासिर किया। मैच के बाकी वक्त में कोई और गोल नहीं हो सका और तुर्की 1-1 के मुकाबले में 2 गोल से फाते करार पाया। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुईं।